प्यारी गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

मिलै तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया सैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी। सत संगत

तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत से मुकत।

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई,

तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा।

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जाम लाभ भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा। जप तप संयम धर्म

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कमेव बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दह रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दह मुहे बचाबू, सुखी बसै मोरू परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दह करिय, सब बैरन को आसंगरिय, पूर्ण हुए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा, राख ले हो मुहि रखन हारे, साहिब संत सहाय।

काल पाए ब्रह्म भक्तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन उपजायो,

सारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचल अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन सिर सब धार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरे

अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तुहे बकानियो। दोहरा सगल

तित घर अनहद वाजी, अनद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे।

ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते।

तरस पयोई, तरस पया मेहरा मत हुई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरा मत हुई, सतगुर

तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाही उथै तेरी रख। अग्नि उदर माही सुनकै जमके दूत, नाई तेरै चढ़ जाहि। पाओ जल विकमस गाहू गुरसबदी पार पाही, जिन को लगी प्यास अमृत से खाही।

श्लोक महल्ला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाऊ, नित्रि सत गुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाऊ, सतगुर से तीरतिया दरगह पाई ठाओ, कहु नानक कृपा करे जिसनो एह वत दे, जग में उत्तम काटी है विरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप वारियन, गुर की पैरी पाए काज सुवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साध जना कै संग भव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे विदारियन, ते साहिब की टेक नानक मने माही, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, ते साहिब की टेक नानक मने माही, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम

0: शून्य सत्याकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, हम भीखक पेखारी।

तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गुले, सुकहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै,

पावन बचपन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इन्हां दी पावन रसना तो अमृतमई बाणी कहंदे ने स्वास स्वास सिमरन। महाराज कह रहे ने जेते सास ग्रास मन लेता, जिन्हें भी स्वास लैंदा है, जिन्हें भी भोजन दियां बुरकियां लैंदा है, कहंदे ने एक एक स्वास विच उन्हूं चेते कर। महाराज फिर की होएगा? कहंदे ने सारी चिंता मिट जानी, मन अंतर की उतरे चिंत। सतगुरु कह रहे ने इस नाम विच ऐसी पावर है, उहदे बचना विच ऐसी बख्शिश है। जितने भी तुसी बैठे हो, गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज, शीतलता ऐसी जिन्हां नूं आपां शहीदां दे सिरताज भी कहने, पाणा जिन्हां ने परतख करके दिखाया, उहदे हुक्म उहदी रजा विच कैसी बख्शिश है। तत्ती तवी ते बह के दिखाया, कहनी कथनी दे मां, ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏਗਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

सब दिसै हरियावली सर परे सुभर ताल अंदर रचे सच रंग स्यों अंदर रचे सच रंग ज्यों मजीठै लाल कमल बिगसै सच मन गुर कै शब्द निहाल मनमुख दूजी तरफ है वेखो नजर निहाल

मेरे मन सतगुर सेव सुख हो, जो इच्छा सोई फल पाओ, फिर दुख ना व्यापे कोई। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला। ओदे नाल जुड़े रहिए, सतगुर पाछे कहिंदे की पाए, सतगुर सबना दा भला मनाए दा तिस्ता बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा कोई इच्छदा तेहा फल पाए कोई। सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई, आप ला चुका दिखी मगर।

कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप वेचाई, दर्शन हर देखण के ताई, कृपा करेता सतगुरु मेले हर हर नाम त्याई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई।

पर पैपैरी संत मनाई। नानक विचारा भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई। चखड़ झांगी मीहो वरसै भी गुरु देखण जाई। समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुरु पै जाय। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुरु बिन मर जाय। ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाय। सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै गुरु।

भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाए होर ने फल सब चतराई सिमर सिमर सिमर गुरु अपना सोया मन जागाई एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई जे गुरु चिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुरु वडियाई गुरमुख बोले सो थाए पाए मनमुख किस थाए न पाई पाला ककर बर्फ बरसे गुर सिख गुर देखन जाई सब दिन सरैण देखो गुरु अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक उपाव करी गुर कारण गुर पावे सो थाए पाई रैण दिनस गुर चरण आराधी।

जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जब तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दर गह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराई, नानक ताकै लागो पाई। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै।

जन का दर्शन दसना प्रभु को सिमरैसी तनवंते प्रभु को सिमरैसी पतवंते प्रभु को सिमरैसी जन प्रवान प्रभु को सिमरैसी पुरख प्रधान प्रभु को सिमरैसी बेमोहताजी प्रभु को सिमरैसी सर्व के राजी प्रभु को सिमरैसी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तिन अनद कनेरे प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहु न छूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पात सिमरै से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल आकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना कट कड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयु नानक के प्रभ सात अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई जय महा प्या दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हुवै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जी मार गयो जात केला तै हर नाम संगोत सुहेला ऐसा नाम सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कूट लख बाई नाम जपत है पार पर आई अनक बिघन जय आय सिंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनक जो जन्मै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबू न तोवै हर का नाम कूट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंगू नानक पाई है साध कै संग जे मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जिह पैडै मांद गुबारा हर का नाम संग उजिया राजा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महा भयान तप्त बोकाम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जह त्रिकामन तुझ आकर कै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकल साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मंतन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि व्यो जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै ऊट सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाती आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै
हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर पू नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्ग सब नसै संत का संगवड भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछे वरना होई नान गुरमुख नाम पावे जन कोई सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्व टंडोल पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास करम त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे माँ उदास तपिसर थीवे अग्न माय होमत प्राण कनिक सब है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम साधन निमक निमकर शरीर कटावे तव भी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जबत गत पाए मन कामना तीर दे छुट्टै गर्भ गुमा न मन ते हुट्टै सोच करे दिन स रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न भिख्या टरै जल तो वह बहु देह नी शुद्ध काहे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहु सियान जम का भव व्या पैन की जतन कर तृष्ण न त्रापै एक अनेक अगनी बुझे कोट भाव दरगह नहीं सिजय छूट सुनायु पयाल मुह व्यापह माया जाल अवर कर तू सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिन नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जी को अपनी शोभा लोरे सास संगे हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे सा जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रदान सा संग जा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा जा का मन हो सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पिक है सगल सिर साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक बापू नहीं लिपा निर्तन को तन तेरो नाओ निथावे को नव तेरा थाओ निमाने को प्रम तेरो मान सगल कटा को देव दान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संगा प्रभराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर कोजा सुन रसन बकानी सगल तान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम सलोक निर्गुण आरे आने आसो प्रभ सदा संभालो जिन किया तिश्चित रख नानक निभि नालस्त बदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिगारिया गर्भगण में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो गुण पूजन सुख सूद वृद्ध पयाव पर साक्षैन मुख पयाव बैठ को दैन हो निर्गुण गुण कछु न बुझे बख्श ले हो तो नानक श्री जय जी प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मित बनता संघसै जे प्रसाद पी वै शीतल जला सुखदाई पवन पव कमूला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगो समग्री संसात वसा दीने हस पाव करने तर सना तिह त्याग और संगरचन ऐसे दुग मुड़ंद व्यापे नान काढ़ लिव प्रव्यापे आदंत जो रखनहार तिश्यो प्रीत न करे गवार जा किसी व नव निध पावै तस्व मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जाकी टहल पावे दर गह मान तिसे बिसार मुग्ध जान सदा सदै भूलन हार नानक रखन हार अपार तन त्याग कौडी संग्रच सा छोड़ छूट संग मच्छ जो चढ़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन सो दूर परान छोड़ जाय तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत पशम संग हो अंत घूमे पत बिकराल नानक काट दे हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बार पे कंतर मल माया छप सुनाई कच करे छिपाया
बाहर ज्ञान ध्यान सुनानंतर व्यापैलूप सुभानंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसी तरह था जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह सुमा सुनंदा कैसी मार्ग पावे कार गहले ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझै डूरा निष्कही है तू समझे पूरा कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आउस गवन करतार करुणो में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई था सुप्रीत बलुआ के ग्रे पीतर बसे अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल न आवे बूढ़े चीत बैर विरुद्ध काम क्रोध मोह झूठ विकार मा लोभ त्रोह आऊ जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सुहाग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी श्लोक दीन हार प्रभ छूट कै लागे आन सुहाए नानक कहु न सी जी बिन नावै पत जाय अष्टपति दस वस्तु ले पछै पावै एक बस कारण विखूट गवावे गीना दे दस भी हिरले तो मूड़ा कौका करे जिस ठाकुर से ना ही चारा था कुकी जय सद नमस्कार राजा कैम लागा प्रमीठा सर्व सूखता हूँ मन उठा जी जने अपना हुक्म मनाया सर्व तोग नानक तिन पाया गन सब अपनी दे रास खात पीत पर तैन दुलास अपनी अमान कछबौर सावले अज्ञानी मन रूस करे अपनी प्रतीताप ही खोवै और उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्तु से आज्ञा राख्या प्रभ की आज्ञा मन है मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर परहूत जान अनेक बिरकी छाया सो रंग लावै उबिन सह मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपटे उतै अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नेहिता को हाथ न आवे के ही मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तान तान कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजुवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रुमो अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर पग सात की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व कुहिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन्नी पर उपकारा मिथ्या बास लित विकारा बिन बुझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम लय वृत्ति सागत की आर जा साच बिना कह उवत सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुकावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाई मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृते सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम तन तन ते जंजी कट बस्यो हर नाऊ नानक ता कै बल बल जाओ रैतवर कछवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेग न गाहू भी नवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पानी तिन प्रभु जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह मन या पह आप करत नबेरा किसै दूर जुनावत किसै बुझावत नेरा उपाप सियान सगल ती रहत सब कर जाने तुम की रहत जिस भाव तिसलै लड़लाए थान तनंतर रह समाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जब नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति जे प्रसाद छत्ति अमृत काहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद वसै सुख मंदिर तिसै त्या सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बस नाठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटम पर हंडा वह तिसे त्याग कतवर लुभा वह जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ बैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखान जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय की उलपार ब्रह्म प्रभ जी जब दर गह मन पावे नानक पत छेती घर जावे जे प्रसाद आरू कंचन देही
जिव लावो तिसराम सुनेही, जे प्रसाद तिरउल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताकै, जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे, जे प्रसाद अपूकन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अस्व हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी, जे प्रसाद बाग मिल्क तना राख रोय प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सहते आई ते सहते आई जुई कलख इहा उहा नानक तेरी रख। जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा नूप, जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुनै करना जे प्रसाद पिख है विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जी बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सह समावै। सब प्रभु त्याग अवर कत लागू गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुथा को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे सास रे मन मेरे तुता शिवराज। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगासु, प्रभु दया ते कमल प्रगा, प्रभु दया ते कमल विगासु। प्रभु सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी माया प्रु कछु न किन हो लया। जित जित लागो तित लगै हर नाथ, नानकिन कै कछु नहाथ। श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए, जु जु कह सुमुखता होए। सुन मिता नानक बिनवंता सा, जिना की अचर्य कथाष्टपदी। साधक संग कूजल होत, साध संग मल सगली खोत। साधक संग मिटै अभिमान, साधक संग प्रगटै सुज्ञान। साधक संग बुझै प्रभु नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन। साधकी महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साधकी शोभा परमाय समानी। साधक संग अगोचर मिलै, साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होइ सब की रेन, साधक संग मनोहर वैन। साधक संग न कतूंता आवै, साध संग स्थित मन पावै। साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सु प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महा पुनीत। साध संग किस्यो नि बैर, साधक संग न बीघा पैर। साधक संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही होताप, साधक संग तजै सव्याप। आपे जाने साध बढ़ाई, नान साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबहूं तावै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस सगो चरल है, साधु कै संग जर सह। साधक संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग शोभा सुरदेवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्व थान गम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधक संग कलुकत हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नान कुदरै साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लग्या परम मीठा, साधु कै संग कट गडीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साधक संग मिटे सबरो, नानक साध बेटे संजोग। साधक महिमा वेद न जाने, जिता सुने तब क्या। साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर। साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत। साधक शोभा उचते उची, साधक शोभा मूचते मुची। साधक शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। सलो मन साचा मुख साचा सोय, अवरण अपेख कसबिन कोय। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी।
ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्मज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्मज्ञानी के तीर जेक च्यों बस्ता को खोदे को चंद लेप, ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यो पाव का सह सुभाऊ, ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्मज्ञानी के मन हुए प्रगासु जैसे तारु पर आकाशु, ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमानु, ब्रह्मज्ञानी उचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन पय नान जिन प्रव्याप करे, ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्म रस, ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्मज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आसु, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाशु, ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी परोपकार माह, ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी लेतावत बंदा, ब्रह्मज्ञानी के हुए सुफला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानक, ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्मज्ञानी के कह रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसै प्रभसंग, ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदानंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी का हुए चिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दस बट भागी पाई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी को खुजे महेश्वर नानक, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्मज्ञानी के सगल मनमाही, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा देश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाया दाक्यर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बकाने, ब्रह्मज्ञानी का गई गत, ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक, ब्रह्मज्ञानी तो सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुख जुग जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल कार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा, ब्रह्मज्ञानी बनी नानक, ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनि श्लोक, उर तार है जो अंतरनाम, शरम है पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक, पर सगल निस्तार है स्वदी, मिथ्या नाही रचना पर स्मन में प्रीत निरंजन रस पर, त्ररूप न पिख है नित्र सात की टैर संत संग हित कर, न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हर है मन की बास, न मन तिटर इंद्रजित पंच दोगते रहत, नानक कुट मध्य को ऐसा परस, वैष्णु सोजी सुपर सुप्रसन्न, विष्णु की माया ते हो भिन्न, कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काव फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग्रह चय मंत्र अंतर सिमरण गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक को वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मंत्र बिनसै सगला भरम, ओंकार पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मंत ने अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम महत्म है, शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नायावै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल, सुखम मैं जानै असूल, चौवरना को दे उपदेश नानक, उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासन पावै जन को, कर कृपांतर उतारै, पस प्रेम पात्र को तारै, सर्व रोग का उपद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहु जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिसने दृ आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर, सगल संगात्म दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा तुम तावै, जीवन मुख सोख कहावै, तैसा हर्क तैसा शोक, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिकाटी, तैसा मान तैसा अभिमान,
तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ईसाई जुगत नानको पुर कही जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित कर रख है तैसा तिन आओ आपे करण करावन जो प्रभाव है सोई पुन होगा पसुर आप अंत तरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगासु पार ब्रह्म करता विनाशु सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जनंत न पारावार नानक रचना प्रवृचि बहुविधनिक प्रकार स्पदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर दर्व को हिरे कई कोट पर दुख न करहे कई कोट माया श्रमाहे कई कोट पर देश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट से जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरखने पजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सून खेतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सुतार है नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की जिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जक्की नर पिसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच सब ते नेरे सबू ते दूर नानका वलिप त्रया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरह कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथी कई कोट भय वैरागी राम नाम संगतिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंत आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यासु तिन को मिलो प्रभु विनाशु कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को होया सु प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होय अवतार कई जुग किन्नो विस्तार कई बार पसरु पासार सदा सदा के कंकार कई कोट किन्ने बभात प्रभते हुए प्रमाय समाता कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सुधा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ संभारे नानको परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण है जल तल महियल सोएष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भाव है सोई हो किन मैं ताप तप अनहार अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार तर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा सुमाई प्रभावै मानु गत भावै प्रभावै ता पाथर तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राख्या प्रभावै ता हर गुण भाख्या प्रभावै ता पत सुधार है आप करे अपन विचार है दुआ सिरियां काप स्वामी खेल विकसे अंतर जामी जो पावे सुकार करावै नानक दृष्टि अवरण आयावै कहु मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इस कै हाथ हुए ता सब किछ ली जो तिस पावै सोई करे अन जान दिखिया मैं रचै जे जान तापना बचै पर मैं भूला दै तिस तावै निमक मैं चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक दे जन ना मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृश्य कछु न आवै तिस तत्काल दै तिस प्रगटावै जाकू अपने करै बख्शीश ताका लेखा न गनै जगदीश जीव पिंड सब तिस की राज घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इस काबल ना ही सहात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई पंथियो कबू ऊंच नीच में बसै कबू सोग हर रंग हसै कबू निंद छिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार
कबू नृत्य करे बोपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवार, कबू होए वह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू कीर्त में आवे, कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रभरा कहती वही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कह, कबू होए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधिक मुख्यान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जी, यानिक जुन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, ज्यो प्रभावे तिवै नचावे, जो पावे सोई हुए नानक दूजावर न खोए, कबू सात संगत उपावे, सुस्थान थे बौर न आवे, अंतर ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रति करंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यो जल में जल आए कटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समान, न मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सत कुरबान, श्लोक सुखी बसे मस्कीनी आए, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकार, या नानक गर्भ गले इष्ट बदी, इसके अंतर आज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहा वह जन मरे वो जोन परमावे, तान भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्ता गए सुख पावे, तनवंता हुए कर गर्भावे, तन समान का संग न जावे, बौलस्कर मान कूपर करे आस, फल भीतरता का हुए विनाश, सबते आप जाने बलवंत, किन मैं हुए जाए पशमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुवारी, गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सूजन नानक दर के परवान, कूट कर्म करे हो तारी, श्रम पावे सगले फिर थारी, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे, तिसे पलाई निकट न आवे, सर्व किरी जा का मन होए, कहु नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब जाने मैं किछ करता, तब लग गर्व जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मो मगन संगवाए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे, सहज कटेला कोट

जाय नाम सदीरे असमाय। आप उपदेश समझय आप फिर चय सब कह साथ आप गिनो अपन विस्तार सब कछ उसकाओ करने हार। उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक कैस होए अपने चलताप करने हार। कौत करे रंग आपार मन मैं मन अपने माहि नान कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद गिने वकियानी सच सच सत सब किन्ना कोट मध्य किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप हुआ सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बख्यानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदर नहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार पदी। संत का दुखन आर जा कटै संत का दुखन जमते नहीं छुट्टै। संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुख नरक में पाए। संत का दुखन मत हुए मलीन संत का दुखन सो बाते हीन। संत के हथे को रखे न कोई संत का दुखन तान प्रष्ट हुए। संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर है। संत के दुखन ते मुख पवे संतन कह दुखन काग जो लवे। संतन कह दुखन सर्प जोन पाए संत कह दुखन त्रिगद जोन किरमाए। संतन कह दुखन तृष्णा में जलै संत कह दुखन सब कुछ लय। संत कह दुखन ते सब जाए संत कह दुखन नीच निचाय। संत दुखी का था को नाहे नान संत पावे ताय भीगत पाए। संत का निंदक मात थाई संत का निंदक टिक न पाए। संत का निंदक महतियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन। संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका पी हुए मोख। संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित। संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए। संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते टरे। संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए। संत का दुखी अद बीचते टूटे संत का दुखी कितै काज न पहुँचे। संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोता। संत के दुखी की जड़ किचना है अपन बीजा पे ही खाई। संत के दुखी को और न रखन हार नाम संत पावे ता लय उबार। संत का दुखियों बिल लाए जो जल विहून मछली तरफड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राज जो पाव किंद नहीं त्रापै। संत का दुखी छुट्टे केला जो बुआड़ तिलकी तुम्हारी दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथिया कहत। कृत निंद का तुर ही पया नान जोत भाव है सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजे न आशा संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख न तृष्ट कोई जैसा भाव है तैसा कोई हुए। पाया किरत न मिटै कोई नानक जाने सच्चा सोए। सब घट दिसकी करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की स्तुत करो दिन रात सत्या हो सास गिरा। सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोथी। अपना केला करने हार दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम देवड भागी। नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाय। अष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जान देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रह अगाए बौर न तृष्ण लग गए आए। मारे रखे कुआ मानु कह किच नाही हाथ। इसका हुक्म भूस कोय जिसका नाम रखंठ रोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक विघ्न न लाग गए कोई। उस्तुत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग सासंग बिन सह सब संग। चरण चलो मारु गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकू।

ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਇੱਕੋ ਏਕ ਇੱਕ ਪਛਾਣੈ ਤੁਧ ਕੀ ਉਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ ਤਿਸਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੂਪ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ ਵੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਿਖਿਆਨ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ ਏਕ ਉਪਰ ਜੀ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸਕੀ ਕੱਟੀ ਅਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੂਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸੀਜਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲਤਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਚਤਾ ਪਥਾਪ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਕੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਹੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਲਖ ਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੁਸੋਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨੂ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨੂ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਿੜਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਕੋਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨਮੀਟ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਆਪਸ ਕੋ ਅਵਦਿਨ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੇ ਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਨਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਬਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਘਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੂ ਹੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਭ ਹੈ ਜਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸਕਾ ਦੀ ਅਦਰ ਵੈ ਅਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੂਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਨਾਵ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ਼ਚਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਭੁਖ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਾਵ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਉ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਮਨ ਮੂਰ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਵਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ ਅਵਰ ਥਿਆ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ ਮੁਕੂ ਜਿਲ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਸੋਏ ਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
साधु की धूर करो इशनान, साधु उपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वट भागी पाइए, साध संगार कीर्तन गाइए, अनिक विघनते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, उठ गई संत दरियाया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाकी दृष्टि पाहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिस्का करने जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्यूच निर्मल करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय को हुए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सच मुकैत, सच दिर सचा आकार, सच वर्त सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच सुमाता, सलोक रूप न रेख न रंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाई नानका, जिस हो वैसु प्रसन्न अष्टपदी, अविनाशी प्रभ मन में राख, मानु की तु प्रीति आग, तिस्ते परै नाहि किछु कोइ, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, साथ तेरे की चरणी पाओ, नानक मन हुवन राओ, मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन परन जाका नित्र फूर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनदरू मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए करता कह, राज में राज योग में जोगी, तप में तपेश्वर कृष्ण में भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस गुर का किनंत न पाया, जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जनदास नाम त्या वैसे, त्यो गुण में जाको परमाहे, जन्म रह फिर आवै जाए, ऊंच नीच इसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाकै रंग, नाना पे करे करंग, नाना भेद किनो विस्तार, प्रभ मनासी एक अंकार, नाना चलत करे किन माहे, पूरे पूर्ण समठाई, नाना भेद कर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाऊ, जप जप जीवे नानक हर नाऊ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरुख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी वाणी, सत पुरुख सब माहे समानी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सफली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई, सत बचन सत उपदेश, सत तेजन जा कर हृदय प्रवेश, सत नृत बुझे जी कोई, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, अपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सु करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते कि मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया, विस्मन विषम पय विस्माद, जिन बुझिया दिहाया स्वाद, प्रभ कै रंग राज जन रही, गुर कै वचन पदार्थ लहे, वे दाते दुकाटन हार, जाके संग तरह संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक
आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत पर सुनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसुनता बुझनहार गुर सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया पै ते निरपो हुए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्ना कहना जाई बुझै बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नान सो सेवक सास संवार है अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लख है प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक उचते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा तिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भस्म करे लश्कर कोट लख है जिसका सास न काढ ताप ताकु राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहुपात तिसके करत बिरते जात मारन राखे अवरण कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रबल विडानी बारंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मंथन त्रपिए नामृतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम कर संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंत्र नाम मह नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सुध काम बोलो जाचे बा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करै भगता तुम कह चाय प्रभ अपने शिव रह समाये जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह क न जानो आठ पहर प्रभ सह जूरे कहु नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ लेहे मन तने अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाऊ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख के गुरु दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी सतगुर सिख का हलत पर सुवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है गुर के अग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन विच सतगुर के पास इस सेवक के कार्य रा सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेव गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को भल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता
ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है अब नहीं कछ परम सह सियान भुलया ना जाइये नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन करण आघाने मन संतोका तुम पतिया ने पूरा गुरा क्यों जाका मंत्र अमृत दृष्ट पिक है हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तिसलय मिलाए जी भाई कुष्ठत अनेक सतपुर पूर्ण भवेद काहु बोलना बहुचर प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहा निर्वैर सुखदायी ताकि कीमत किने न पाई अनिक भगत बंदन नित कर चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सदगुरे अपने नान जिस प्रसाद है सब प्रभ जपने इव हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए इस पुर का नाही कदे विनाश चाकै मन प्रगटे गुणदास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कै संग न ले मन में राखै हर हर एक अंधकार दीप प्रगासे नानक परमो दुख तहते नासे तप्त माय ठाठ वरताई अनद पै दुख नाठे पाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपो हो बसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका सातन कृपा धारी साध संग जपना मुरारी खित पाई चुके प्रभु गवन सुन नानक राज श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोय सर्व निरंतर को सोए उत्पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कलधारी अनखबार नानक भले हारी सलोक साथ न चालै बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक धन सार अष्टपति संत जना मिल करो विचार एक स्मिर नाम आधार अवर उपाव समीत विसारु चरण कमल मैं उतारु करण कार सुप्रभ स्मरत दृढ़ कर गाहो नाम हरवत एव तन संचो भगवंत संत जना का निर्मल मंत्री का सुरख मनवाय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख नित बाचे मई सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटे अरव कदलाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जब नानक दरगह परवान मन प्रबुद्ध हर कह नाई दादिस्तावत या बैठाई ताको बिघन लागे कोए जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पौ बिन सह पूर्ण हो आस भगत पाया तम प्रगास तित कर जाए बसे विनाशी कौ नानक काटी जम्पासी तत् विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचू काचा आवा गवन मिटै प्रभु सेव आप त्याग सरन गुरुदेव यो रतन जनु का हुए उदार हार हर सिमर प्राण आधार अनिक पावना छूटन हारे सिमृत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुतमीत कुटांबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डंब झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै न बिगाना ना विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन वाहि जन्म जन्म के किल विख जाहि आव जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाऊ सह सुभाए नानु गुण गाओ तेरी उत्तर सुमैल बिन सुजाय हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास गिरा सर नाम सुमाल छाड़ सियान सगली मना सास सुन पावै सच धना हर पूंजी सच करो व्यवहार यहां सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे कुछ के गुण गाऊ अनंत मंथन जाप एक भगवंत
एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे प्रभ आप अनेक विसार एक थे पै करात प्राचित गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाई नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें त्याव चरण कमल शोला कह प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत हे कोटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सारु प्रभ की दृष्ट मां सुख होए हरस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जंत्र बताने पूर्ण पुरुष नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंगू पूजा चाऊ सात कह संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगा संत लिवलाग बटभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक किन्नु सदा निहाल बंधन काड मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इचपनी श्रद्धा सब पूरी रब रया सत्संग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरै जी काल न पाने सो क्यों बिसरै जी किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जी बिकती काटै जन्म जन्म का टूटा काटै गुर पूरै तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ये काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो भगत पाए तरी संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपो गुण थास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रो पेग दर सुख हुए मन बिकसै साध चरण तो हो भगत जिना कै मंत्र रंग बिरला को पावै संग एक बस्ती जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाये रब अक्सांद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भगत जना के प्राण धार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम करके गुण गायन कराज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत सात संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य पचना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिह ना जापत तब हरक सो कहो कि सह व्यापत जब अपन आप आपार ब्रह्म तब मोह कहा कि सोवत परम आपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक कह रगम पार तब नरक सुर कौ कौन उतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाई तब शिव शक्त कहो हो कित ठाई जब आप है आप अपनी ज्योतर है तब कवन निडर कवन कत डर है अपन चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपनासन तय जन मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए
तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते। आपन आपा पी चर जा नानक आपन रूपा पियो पर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत को कीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावै तै किसह भूख कवन तृप्तावै। करण करावन करने हारु नानक करते का नाही सुमारु। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कलाया पै परवीन तह वेद कतेब कहा कोचीन। जब अपने आप आपुर तारे तो सगन अब सगन कहा बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल अचेत अपेत समाया ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को अपह आदेश त्यों गुण का नाही प्रवेश। जय कह एक भगवंता तय कौन अचिंत किसला कह चिंता। जय अपना पाप तियारा तह कौन कथै कौन सुन न हारा। बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आपै पहुंचा। जय प्रचु प्रपंच कार त्यो गुण मैं किन्नु विस्थार। पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल हों मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपज्ञान। अपन खेल आप कर देखे खेल संकुचे तो नानक कह। जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप। दुह पाका आपे खनी उनकी शोभा उनहु बनी। आपह कौत करे आनंद चूज आपह रस भोगन निर्जोग। जिस भावे तिस आप नाई लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथाह अगंते अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक

कह दृष्टार अष्टपति आप कथय आप सुनने हार आप है का विस्तार जात इस पावे तां सृष्ट उपाय आपने पाने ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किच हुए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जीता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ पुनाथ जिस रख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार पूरन पूरहे दयाल सब ऊपर होवत कृपा अपने कर्तव जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाले जीयन बोपात जो जो रचियो सोते सहत्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक जानिया जन लागा हरे कै नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इस्ते

गुण गावहु प्रपरमानंद। राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देह का करहु उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुआओ। आठ पहर प्रपेखु नीरा, मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाबहु, मन इच्छे नानक फल पावहु।

जिस मन बसै तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाई, दुख दर्द मन ते पहुँचाई।

नानक बहुर नया वह जाहे, तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरे रखन हार त्याए, निर्भउ जपै।

नाम जपत मन होत सूख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन कौ कोए न पहुंचन हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतरजामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सुहोत निहाल, ताकै निकट नयावत काल।

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर कीर्तन चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मांग, आप छोड़ बेनती करो, सा संग अगुण सागर तरहो, हर तन के पर ले भंडार, नान गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहजानंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उदारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंग बार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कुमावत होत उदार, आप तरह लोक कै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लाका हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उतरे तिन कै साथे, शरण जोग

साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहती राम नाम सुन रसना कहती कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभही केप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मी सावधानी खागर चीत सुखमनि सहज गोविंद गुनाम जिस मन बसै सोत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण हुए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तब योग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मै ताकी गत हुए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद वकाणी सबल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपरा सा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जाकै मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै।

कृपा पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेव तार भुखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाण पां लख होहे ता एक न चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तान खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथ ना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट दिंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसाए वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मूख द्वार नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निदान गावियै सुनियै मन रखियै भाव दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देहे बुझाई सब ना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानियै नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाई कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत धवल आकाश सुणै दीप लो पाताल सुणै पोहे ना सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास
सुना है ईसर ब्रह्मा इंद, सुना है मुख सालाहन मंद, सुना है जोग जुगत तन भेद, सुना है शास्त सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सत संतोख ज्ञान, सुना है अठ सठ का इसनान, सुना है पढ़ पढ़ पावे मान, सुना है लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पातशाह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश।

निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोह चोटा ना खाए मन जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ सिउ परगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन पावे मुख दुआर मन परवार ऐसा धार मन तर तारी गुर सिख मन नानक पावे ना भेखो ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंच सोह हे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जेको कह करै विचार करते कह करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर केता पार धरती होर पर होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सपना लिखिया गुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संयोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पाणी धोतै उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहु जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए
सुवास्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वखत कवण कवण थेत कवण वार कवण से रुति महाकवण जित होआ आकार वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थेत वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नान

मुंदा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करह बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आवह पाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जेव ते सुभावै तिवै चलावै जेव होवै फुरमान।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार, कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दो जी बौ लख हो हे लख हो वै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस। ए तरा हे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस, सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राजमाल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। केते ब्रह्मै घाड़त घड़िया रूप रंग के वेस, केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। केते देव दानव मोन केते केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछुताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरान सिद्धा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोत महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे, ना उहे मरहै ना ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लू करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथै लो आकार जीव जीव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार, पाओ खाला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़ीऐ शब्द सची टकसाल। जिन कौ नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाई

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੂ ਸਾਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ। ਕ੍ਰਿਪਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਆਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਆਦੇਸੰ ਆਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਗੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਭਾਉਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਪੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ, ਅਭੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ, ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਬਰਨ ਹੈ, ਅਪੂਤ ਹੈ, ਅਪਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਭੰਜ ਹੈ, ਅਚੂਜ ਹੈ, ਅਝੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਤ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਧੰਧ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਜੰਮ ਹੈ, ਅਪੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀਆ ਨਾਥੇ, ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀਆ ਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਬੂਤੇ, ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ, ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ, ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਤਰਮੇ,
नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग इष्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे आरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा विरुद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात शांद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्तीन धाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृशंग नमो सर्व कृशंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग परसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वता रेद सिद्धंग निवासी चरपट छंद तुवा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल शांतवा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव आपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल यत्र तत्र विराज ही आवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक देव पेव न जा नहीं जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जा नहीं केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतुर चक मानई पुरतीन लोक चौदह के बिखय जग जापहि जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक नित पाखत नित कूट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनासो आजान बाहु शाहान शाहौ राजान राज पहनान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार महिम मुनगन प्रणाम निरपह निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडंड बाड्य चाचरी शांत तुआ प्रसाद
गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भारती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथि स आदि स अदृश अक्र स भगवती शांतो प्रसाद कथते के अशेज दिस के अभिज भिस के अगंज करम के अपंज भरम के अभिज लोक के अदित सुक के अवतूत वरण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा आभरण है के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपौ अनुपे के आदो अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अप बुल गुनाह है के शाह नशाह है के कारनुक निंद है के रोजी दहंद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र काल्लाय के सर्वत्र पाल्लाय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजाय के सर्वत्र राजाय के सर्वत्र सोखाय के सर्वत्र पोखाय के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राणाय के सर्वत्र देशाय के सर्वत्र पेशाय के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमंग फही में के आकल अलाम में के साहिब कलाम में के हुसन अल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसताय बिलंदल मकान है जमीन जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निधान है हरीफल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनी मुल्खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आद रूप अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभरग त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अशुज है अशुत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शांत व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न पात न मात न जात न पात नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शंतो प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सो सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुस्न चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी दहंद हैं के राजक रहंद हैं क्रीमुल कुमाल हैं के हुस्न जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाइक रहीम हैं
समस्त जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकुं प्रणास हैं बहस तुल निवास हैं के सरबुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परंग परम ईश हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीन अलजमा हैं अमीकुल इमा हैं क्रीमुल कमाल हैं के जोरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुभाष हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मधुभार शंतो अप्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरपर अगंजो हर नर प्रपंजो अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनाश त्रित तर तुरास अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज युगात आजिज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टट भंडार अन ठट अपार आ ढीठ कर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मन शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथप थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भवपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो योग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी छंद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग क्रीमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे ओ घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बेन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे
कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेत न्यावत सीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ाण को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देफन दिन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के भौ पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इष्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहत फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं काहू पशा कौ सीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पास को मिरतान कौ पूजन थायो पूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान कौ पूजत है पश को मिरतान कौ पूजन तायो कूर किरिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दय मुहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिया सब बैरन को आज संग्रिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सेव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जचन उपजायो
आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बाद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान है, घट घट के पट पट की जान है। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीन तनह पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीने, उत पूज खान बहुर राच दीने। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुख तो हवै मरे, पुरख जवन

हैं ताकि काल निकट न है आए हैं रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताकि पाप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री अस तुझ जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तिसै ब्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सो रस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रहै हो जो या की एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस फण जय अर्ध सहस फुन तीन कि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जानेओ श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तोहे बखानेओ दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहे ओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहारो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिरड़ा हर त्यावहो गुरमुख हर फल पावहो सुख सोहिरड़ा हर त्यावहो गुरमुख हर फल पावहो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावहो जन्म जन्म के दुख निवारे बालहारी गोरे अपने बिटहो जिन कार्ज सब सवारे हर प्रभु कृपा करे हर जपहो सुख फल।

पार सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसार नाम जन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पजाई सदा कुरबान कीता गुरु विटो जे दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द करस भागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस कीते काल कंट कमारिया तुर करम पाया तुर जन कौसे नाम हर के लागे कहे नानक तै सको वातित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल

कहो नानक नित ए वैत्याई, गत हुवे संत है लग पाई। आसा महला पंजवा, उठत बैठत सोवत त्याई, मार्ग चलत हरे हर गाई है।

वह कोई, सगल सृष्टवा के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताकू जपिय नाम, साध संग मन सो

ओपत परलोखिन मह करता, आप अलिपा निर्गुण रहता, करन करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा, कोट जन्म के रहे पुवारे, दुलभ देह जीती नहीं हारे, किल बिख बिना से दुख दर्द दूर, भय पुनीत संतन की तूर रहाओ, प्रभ के संत उदाहरण जोग, तिस पेटे जिस

नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुर ते पाई बुद्ध आसा महला पंजवा मिटी ते आस अज्ञान अंधेरे साध सेवा अग कटे कनेरे सुख सहज आनंद घना गुर सेवा ते भय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिन सो मन का

आओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञानी अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मन है अरादा। किचु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवंत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए इह माला, जपत जपत भय दीन।

हाउ हर माला उर अंतर धार है जन्म मरण का दुख निवार है हृदय सुमाल मुख हर हर बोल सूजन इतुत कतह न डोल कहु नानक जो राचे नाए हर माला ताके संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका हुए तिस जन लेप न व्यापै कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कै

प्यास मन लागी, सहज आनंद बसै बैरागी। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय महदी जय। आसा महला पंजवां, मन त्रिपतानु मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया किरपाल। संत प्रसाद भली बनी, जा कह ग्रह सब किच है पूरन। सो

कौ मैला, उस आनंद तहम सद केला, ना उस सोच ना हमको सोचा, ना उस लेप ना हमको पोचा, ना उस भूख ना हमको तृष्णा, जा ओ निर्मल ता हम जचना, हम किछ नाही एकै ओही, आगे पाछे एको सोई, नानक गुर खोए भ्रम भंगा, हम ओए मिल हुए इक रंगा, आसा महला पंजवा, अनिक भांत कर सेवा करिए, जियो प्राण धन आगे धरिए, पानी पखा करूं ता जब मान, अनिक बार जाइए कुर्बान, साई सुहागन जो प्रभ पाई, तिसकै संग मिलो मेरी माई, रहाओ दासन दासी की पनिहार, उनकी रेन बसै जी नाल।

सगल उदारे, प्रभु की प्रीत चले संगारे, आपो कोई मिले न भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा। भूपत होए कै राजकुमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचित संचित थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मजहरिया, गर्भ गर्भ वाहु मह परिया रहा, निर्भय होयो भया निहंगा, चीत ना आयो।

अब मेरु मन भया आनंद भौ चुका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया घर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट

चवर सब ऊपर झूलै, जाका चवर सब ऊपर झूलै, ताका धूप सदा प्रफुल्लै। घट घट संपट जा, घट घट संपट है रे जाका, अभग सभा संग है साधा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत, जिसह प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो।

आदि चित्रगुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को दृष्ट न पेखा। कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ताके अनहद तूरा। आसा महला पंजवा दुपदा इक, साधु संग सिखायो नाम। सर्व मनोरथ पूरन काम, बुझगी तृष्णा हर जसै अगानी। जप जप जीवा सारंग पाने, करण करावन शरण परया। गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। रहाउ लाल जवेहर भरे भंडार, टूट न आवै जप निरंकार। अमृत शब्द पीवै जन कोए, नानक ताकी परम गत होए। आसा घर सतवा महला पंजवा, हर का नाम हृदय नित त्याई। संगी साथी सगल तराई, गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर ते सदा सुमाले। रहाओ तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा।

सेवक दूख न चूरण, ओट गही निर्भव पद पाई है, सा सा सु गुण निध गाई है, दूर ना हुई कतहु जाई है, नदर करेता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास, असा महला पंजवा, प्रथमी मिटिया तन का दुख, मन सगल का हुआ सुख, कर कृपा गुरु दीनु नाऊ, बल बल तिस सतगुर कौ जाऊ।

साहिब कह मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु दिवाया भई अचिंत्य कलिवलाया ज्यों

समूह प्रबंधक साहेबान धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिन्ना शुकराना करिए थोड़ा है। डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हों के उदम सदका समूह प्रबंधक साहेबाना का सदका अपना सारे ने कि जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे, नाल ही अरदास भी करांगे।

भगत जना के मन विसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार के भी कलेश मुक जाते हैं, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन विसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दी खिमा गुरु बख्शिश करे, रहमत करे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।